0: आकाशवाणी इम्फाल हौजे मणिपुरी द पाउ ताबिरसी
1: आकाशवाणी इम्फाल हौजे फाउ की मनोब पाउदा इम्फाल वे जिला कौटुक सेमकलीब नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री युनाम खेमसा चतुन येंसनख्रे से खेमसा लेबा गासी अहम लेमजनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राइज सेमगदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थागत फोदी डिस्कशन फोरम उख्रुलमदि ऑल हुनफुंग तांग ऑर्गनाइजेशन सिंधुना लीगल अवेयरनेस ऑन एंटी टेररिज्म हाइबिरमदांग वर्कशॉप अम उख्रुल द पांगथोख्रे सेनियर एडवोकेट देसिर रामसांग अमदि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हुंगयो हुना रिसोर्स पर्सन ओइना वांगांखि निमिन इन चथराक पा एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज प्रोग्राम मंगासि सान्देल जिलागि सालेमथार विलेज कम्युनिटी हॉल द लेसन क्रे प्रोग्राम असि मणिपुर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ने सिनबनि थरम जिला एंटरप्रेनर सरुक याखी धनमजरी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन इम्फाल से खुद की पाठों लाप एनुअल कम्युनिटी कंटेक्ट एंड सर्विस प्रोग्राम की सरुक सुमान कुमई इंटीग्रेटिंग इंडिजिनियस थिएटर एज ए पेदागोगिकल टूल हम नोम की सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप कॉलेज की जुबली हॉल पाठोख्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेदरलैंड्स के हेक्त भारत की मैम की मांग वा भारत मसाई हईथोब क्या उठोन थबकद सौथोब फाई मफम भारत मचा थमोद मरब इहुल क्या फाव थागत फोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फाले कदीम अल जायदीन इराक की अनुब प्रधानमंत्री ओरपद नुब फोदे सोशल मीडिया थागत वारोद प्रधानमंत्री ने इराक भारत अनेरी अली फाले कदीम अल जायदीन प्रधानमंत्री ओरपद सेसिल इजराइल लेबानन मखा ताना मनीपुर लान तब लेब यानख्रे सीज फेयर से अमेरिका इजराइल लेबानन की म्यूट सिंगाबाद वारी सानब तुंग यानखीबी पा लोजरी
0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक ताबिरसी यू टाइम्स गाइखो ताकिसी।

0: ngai khota ki sithoram tabire housing amuk tabire si sumang lela ba thiba lela sanabi daba city yatra mandal gi lela roi singh
1: da lonchat biwarane haba machilam ta yawna na ta ba
2: ahoy
1: mi ni haba da matiksha da ba makhile le kha ta be khunum ta chena u phang le da
2: ahoy
1: thang ten mi si ba ya ba phola na tat na si chena da mu khana ba gi ja da hai dun kana de kar ye mu hai gi ni ha
2: ahoy ma khoi mi ja
1: kha la ko ya la khino ai ung ta ngang gi ge ai wa kaung khra ni adna matam ma si dei gi sar bi su su jal le do tu nai gi pratima si tha ja hou na na
2: ni pa ya phom le ye dai bu ma
1: ni pa ma ne he ya ba na ti ne ni pa do bie natra ga eme have the young ilu have the yagad ba mita khel gi par war kar su le te lu pa le sing ma ta bas
3: pali pali
1: le so
2: pratima si la ta
3: yu geller patient you naughty boy tell your face क्या देखती हो
1: हाँ बॉय बॉय बॉय साउनो साउनो साउनो नूपी में चाह गया ले को अदुगा लंबी चट पसे तंबड़ी खरम भाई वो लोग इसकी बाई दिले खंगे था ना
2: ये बंगो वालो उरु नूपी में चाह भाव तारण तो उन्हीं लंबी चट पसे खंगे ये भी वो पोलो इसकी बाई दिले
4: ए आई नशी दंगी है ठेने इतना करी लाये तम बनो बंगो ना हाँ मुक्ति वाह बसी आई कनाम का रुत ठेने रखती कदा कदा रे बुझ सके मी उधर मंत्र का हरे बकरी नो
5: आ आ कुछ हो भी किनो मी की मरण तो नाई से अल्लाह ने प्रमाण तोड़ी बनी दो सेन मुग कई उन बदा सेन मुले में के चटपक की दना कई ले में के चले अल्लाह ने प्रमाण
4: प्रमाण का तो भी नहीं गुमो नंग हम ले
5: आ तथन के जब की अमुक तो छवि अमुक तो फंबी कोलेक्शन भी खुश हम
4: आई फमोय तास तारोय मरुल में हेक छेउ तसा रगे
5: इसे दादा ने भा अमुक नंग बबी क्रेम न निवांग न सियार जोरी दादा
4: भा फबी बुंगो इसे ने सिंबियो ने वा हतंगा नु से करीनो ने वांगा ने रुई जुआ हाँ करीनो लुपा लिसिंग में पुबिक है नशा लाई तमगी नहीं देना नशी है यंग तो की देना मशीन मशी सेंडुआ ने खंडे सेंडुआ ने खंडे के पीवी ने मी मरु तो पी है सेंड सिंबियो या बी दे हाय रे नशा तो पंगाई को मशी करी ऐसा नो ऐ शेम भूमि ब्रो शेरा कई शेम भूख दूं नो नशा एक मुसाना तो पुरे ने लुपा तो ब्रो कई शेम भूख दूं हाय ने शेरा हुरा लुक मंगाई देना
5: विष्णु विष्णु विष्णु मा तादन मतलब तक पी करूँ ना सुन दो मुनिसी तादन
6: इमा ऐ कोई तामुद ना मुझे तुम्हें इमा
5: ना सब
6: कोई पापा साला ना मुझे ना इस साला ऐ ना नुआ इधर
7: नुआ करी दोरो बगे बाबा असुक याम है जरी विष्णु हाय मा करी दोरो बगे शिवो
4: हरे कृष्णा हरो ये तो कौन हो रहा ना वहाँ आंग उसी तो बच्चे ना बा हाय जरी बा हाय बदी इबुंगा इसीएं तो मेरे के सिंबी दर बदी हाय जब आया
5: तादन
4: हाय जे दर बदी ये भी गे बने हाँ वायंग गांधी हाँ ब्रा हरिंग ने मित्रे सेंडो इसे ले पुन्न लुपाल इसमें नहीं चिंगो ना पाने ने नंग लाग से इसमें हरिमी शेरा धने सोले ती खंडे बचा रहे थे
7: सांवी दिनों आई बुबा अम्मते दे
4: ना पाद हूँ
6: इमा अरे कुछ बाजे का नूम तो उनके मोरे पाप अच्छा
7: गुरु माने याना दोना मुक पुंसा ना रहे ना करे तो भी वहाँ उधर की ना
8: हाँ जिक्के जुगा सिद्धि भाई सेन के मामले सिद्धि ओन होने याम रहे भाई आये दी असुम अरान पुनः मार सेन न पुंगो कुपन पूरे सेन ने रे पता मम तो पता बोले रे ने भाई सेन मम्मी हो बा हम सुन सेन के मापांगे ले बा मकई दी नहा ऐहा नंग नहीं बुवा कन्नी कर शुरू भी यारू ये भाई वालों मान के दा आला
7: इशा मनी ने मनी ने मनी ने हेलो करो मैं किनो
9: बेरी
7: बाबू उन्होंने शांता श्ली नहीं कई जोर के नंग थबा चिन बलाई बुरा लेकिन त्रिवेदी बाजार भाव दिशा में नोर्सी
8: अरे तू
7: हाँ मासी बाहु तो अरुबन
8: मैं को सक्षम आ रहा किस चीज़ ना
7: साक्षात संपूर्ण त्रिनेत्र बिहारी बाबू कोई बाबा यम कन्ना हो रही वानी और पोस्ट की डॉक्टर अपना उन थोड़ा नहाई करे मत आसाद रव दिहात फेलो ए पाव याने ले है ये यू इरे ये सी ऐसे मशी लुपाय यंग की डाक लेगी दोरी बने ये अरे मत थकते हो जब पैसा नहीं बाई खुद ऐसे लुपाय ना अंगांग भी भाव लेते सीने सुन को नेत्र लुपाय लेसिंग अनिशंग वही डाक लेनी है बिहारी बाबू अरे मत थकता हुजी हुजी की लुपाय लेसिंग अनिश दरकार हुई

0: 哎，怕不能么打的是，俺都碰过些。
1: कुम्मा मगी लक्षा धजा खर गोबी बा फवल म अंतर अमर उसन जबा चनो दंदो ख थबी रुबा ना जा खर बर उसन जबा तुम दोने से सेवा चली बी बु
2: अदो आइ खो आइ गाना बीएससी अहोत भी हने मन खर कान हुन बिर बे नाना फंग बिर गदम ने
1: हा मन फने माइकल ल पॉलिसी मंगा योरु बि रे
2: हाय फने याम हगल मेना हुजी हुजी
1: लुपा देवी
2: खुका खुका
1: सिनबी
2: आ पमे तो कोलो पास है आई बी यो तो बतोन खरा था
1: हा हा हा इना उसा भागी तो रुसी कुमसी ने कना कना बी था बा कना कना पास तो कुदी बा
0: करेगी नो एगा बी तो
2: बी ये हम तो नती ने अनि यू ले रे इन ना
1: कना कना नी ना तू
2: स्टा फैमिली बा इबो अरन बाबा सिमा अदु आई नो बिहारी सोइन पास तो कुदी नेगा
1: इस इबो ओ सिमा जी मा से खंग दे ना सुमरे ने बोन हा बा बस ने मा तो ने सागे ने जाने वा ती रे लाइव ये ने हम नी नती इबो ओ सिबो करी मिन कोगे
0: अरुण कुमार है बने जा
1: अरुण कुमार
0: ओए
1: उरुनो कुमारो निमिची बचा पसकले बतौले नते गोसी नते कनि तो पोके
0: हगु म पलवाने के यमा तार बजा
1: संगे रे को इन तो कदम नि रे
0: औरन चलो रे भाई चल चलो सुनो
2: बेरी ऐ चक्सा रे ऐ चल लगे आइगा नना ये सिंगे सा इस के मतम और मनाइगा लेंगा सि नने को हला चगे
1: तो ने नाम तंग तार चल रे दे इबु
2: लेंग दे लेंग बिरो नने हंगा चगे लेंगा सि
0: बेरी बाबू कना नो फुजु किया गाय दबो मा वो थांगी छिने सखरब जालो मंगवंदगी फंगदर लुपाय दुबो माथी लुपा लिसिंग लिसिंग वासी याम कोम पालमे असही को असी उरुरु मखला खोय बाबा उनो उदम न हान बता रे
2: बिहारी बिहारी
0: कतो रे भाई
2: कमाई तो छेगे
0: करिन नो ना
2: आ गया बी ए थी से हलो आ बिया देने भाई
0: करिन ने गे
2: इबो मारु बाबू छे जाई तो बुनाई दा
0: यमो भाई तू न देरी बसे छेन छेन न गौरी बने कछ करा के छेन नते नसे यंगसिंग आइ बिया यार बुद्धि मरे तुम ही मनुष्य होने
1: पर हाँ कदाई कदाई वो हाई भी तो कदाई वो हेरा थे ना उसा कैसे खल रहा था लाइबक साथ तीन ने बती जार साथ की मरन बुवा भाव तो नहीं नते वो जब मुक्ति भी पूर्ण गए नहीं
0: बा नंग ऐका तो ले सो के तुम यहाँ चलो नंगे लुपा है तो भंग दीजिए
2: हाँ लुपा कना देगी भंग गए ने प्यारी
3: यायमा अम मुंदे हे थांग दे दुगो नंग छ औ घर बदे तान न भंग द्रम मम ना द्रम तम छि मांग न बतो होनो बन न थौ विसुंग इ तको ओहो वा ता द्रम मुंग ले दु से कोगु सिन कना न चखर मि तिबे मसा उस्ता इबे मन नि नंग दी ता पबे याद्रो नत्र गलो छिन दे याद्रो हा नंग खांग द्रो पिगले बई सिंग मरिंग मरिंग ना चावरो महा समुद्र वइखे कुबले बले ngoi मरिंग मरिंग ना नुंगार ब पृथ्वी शंकी कुबले ब पाउडर की मरिंग मरिंग ना पाउडर की कौतासी होई के बनी मी ने तानो बंगाय देना मसम थौदा बंगाय देना मथव तो वो मी दो कोने ने मी अचंग बा
4: अमा तौरी गई दा अमा हेत हाई बी रे ई अमा हेत नंग हो गे
3: नंग ब खमो मतम नाय ने सियाय मा अदु नत्र बदी ने वा नी से ये खा नंग ये वाम ते अर्थ तल रो नंग सि थबा तेल रे बंगा से यु के ले कौसा को तौ ले री छा
4: लोई जे रे
3: आइ नु थव को लोई बा हे बले ब्रो सिंघार बा
4: हम होय
3: जरु कल बा
4: होय
3: संधि छार बा
4: होय
3: संगोन छिंग बा
4: हम होय
3: ले कोली सिंग चार बा
4: होय
3: कागले तेंग छिम लब रा
4: ई हे मधु मधि काव रे
3: तौ ग द बन थौ काव रे याय मा नंग छै म पो छै मी उरै दनै हम यंग छै मन ना शिकारी ना
4: छोर होली बने
3: हो छोर बने होली बने फरे याय मा छोर होली बिसे करी गुम काउ दुना है बिदी तोलो बिदी कम दमनी मिया दा
4: आ शीनी
3: शमी ने छोर हुन ब काउ बिदी मी शीनी
1: आंगो ला ला ला ला सगाय ओ ला दै गु सगाय ओ ला ला ला ला
3: तले छ
1: दै मो
3: नंग ला ला ब्रा
1: हा है
3: कम दरे वा आ दो आ
1: इ मो छि मो ग दै मो ओ
3: ओ इबो ऐ कंडीशन सिंग सिदी नंग नंग छ पंगम लगन नि दना
1: आ छ मरी बंगो ए को दै बंगो नि हिम लाइक सिदी मो सोइ बोले त्रबनी
3: अदु ताइमो खान नम तंग हल तंग ताइमो जुमी फरे फरे अदु दे खुश तुम नंग दंग खान नम
1: ताइमो ताइमो
5: हु आर यू बॉय ओ टेस्ट टू बी यू गेट अप आई शैल स्टैंड अप आई शैल स्टैंड अप ओ हु इज देयर फादर याई मा ओ डैडी
6: प्रतिमा
5: डैडी
6: व्हाट इज देयर
5: हु इज दिस नॉटी बॉय मीन ठंग मशक खम दी नार नी बाबू आई उरक सुनी कती यू गे दाओ
3: प्रतिमा गे
5: नंग खंग गे दो नंग
3: गे गे करी खली बगे वो नंग दे हुजी
0: आई आई याद जरे कंडीशन सिंग अदो पीने बिरो सही तो जरा भी अदुगा लुपा दो
3: लुपा आई शोधर पी गई आई कंडीशन सही है तो वह लोई बगा याई मा लाओ बाबू मुझा हाई इंखे बाबू मुझा को को चलो बैंक तो चला गया लुपा कायरू लुपा लिशिंग मंगा कलाबरा बाबू मुझा का धवानों का ऊंचा मिनो हल्ल में उन्ह हलु गान के तो वांग गान हलु अधिक निमित्त और उन तने सीधा मुहल कदम नहीं थागे तो ना
4: हाय
6: हरे राधे श्याम आए बुमो मशा पुक्ष बाहे पकी नुआए बदु सीधा कमली नी मई पुथोरो शफुयु अंतु गायु ऐ मी पोले बियो
7: करी कम दो बदगी नो
6: कमली नी इता ओदो लेते ने
7: माशिमा करी ने इता
6: रसानी पा महापाप उरुन हाथ पनी ने हाथ
7: मत ओ करम ना
6: नहान दु अरांग दु जज गदी ता ओई वानी चले नशानी पा तो बुंग मदुना नंग आई वान हे मशे न तादना इता ओदो की माइन हे मशे अम तंगाल तना जज जदी मस्तान पी अदु गलु होम नोर में हे कमली नी
7: हरे कृष्णा
6: अंग पतो शामन खिवना हाई नी हरो एक खंड दुना महाग पुंछीच पर मरी तनरे महाग शी खेलो दुना इंधो मगलाया दो इता वही बानी ज्ञान मांग दुना शोर पुने सुंपर पर लाग पुदा लंखांग द गाड़ी हवा गाड़ी में थेंग दुना इता उधर तू खेन है कमली नी हॉस्पिटल दे ले किधरे निगम किधरे इता निगम किधरे नमस्कार
8: अरुण बाबू पूर्व थाम अंद्रबा अवाबे कुथो मदो अंत तेजा सामगी कंडीशन द तारमी ना खदे इंगै नेने भाई
0: अवाबन बिहारी बाबू खांग दंग उबंगा ने सारे सारे है सोंथर कुद मै नुंग द तार अवाबे से खैतन कोंग न नबाई दना जे साहब की मशान पी दुलो होनो रे वाही ये मगा हंतरम ग हंतर वाली वा आम त मियन ता नंग न बया बाबा नै बुजु पुन सी सिमगी इन थोक पी सी रे दने सफु यान थुगाइ खरे छोन दना जे साहब की मशान पी दुग ति नबे याद बिहारी बाबू आई खलु द ज्ञान ता
8: पूर्ण महाउर वांग तने नम नम लो हन लो रे भाई अदो की तमक तति करम तो सिंगल को नो भाई हाय बन पी मसा आदो ऐ की लोकटांग छन छ पु बिरो हाय दे नु मन भाने जों ले बिरो सारा के फाउ द लग न रे ज्ञान तारि बने अम लग न बिरो तरे न तम बिरो
0: को न मदो ओइ ब मते यार ओइ बिहारी बाबू का न दरे ऐ ये सीधा तमा गा तौ न सिज ग रग लोय रे दरा
8: एरा मतिक सा देदा अदो की तमन सिमी नो दवा आदो को ए भाई अदो की तमते कम सिंगल नो ले बिरो आदला लिवसे आगा तुले सोर जाय सहे को मांग लेदा
0: हाय माने एक रोम थे मतो रिजा हसली एनी उने जा निंगरे लेंग छि
8: अदु लेंग छि ने
5: याई मा बी बाबू गाव बदु लाग रेंग
4: हले हले बी मा
5: कना
4: बी बाबू बाबू मसा
5: कदम संग केयो
4: बाबू मसाई कादा नते नते सोम दे संग
5: चंग ल कने खलो छलो
4: इश योक्षन आदबो नंगरे नंगरे
5: करिगे ने सिर संग ले बसलो नै कादा
0: आई का थोंग लोन थ
5: नमी मरी मंगानी थों हा तो तुम थंब कना ना संग बंग बखलो के चलो नै का कोट कर पुखरो
0: चलो नि आ त्यामा त्यामा इसिंगला संत पी इसिंगला संत थकी
5: याई मा इसिंग दो मै का थम चलो नै का दा चलो आगे तो चपी आप रो मै को जवाब पिरम को बा ए गुड बॉय जवाब पिरम दनी से चच बिया रो हायो मसी मरी मंगानी से काई ले हुई
0: जुम दो
5: करम बयो
0: नंग थम न बजे
5: करी अधुक चौ थोक पा खुम चलो यू गे दाओ ना आई गुम सिदा ना सिदा गे हन ले बिया
0: थंग आई सेंग अब्रा
5: अदे
0: दिन नंग हयें करी वन मि लमदा आई ये सिबो मोहन नंग
5: सेंग अब्रा नि सिंग लेरो नि सिंग लेरो करम मनि पानो नि न गा गे सेंग जतु मि न तादो लेबंग हम याई मा थोंग न सेलु दरवाज बंद करो बस निकल गया
3: प्रतिमा ओरुन कुमार बाबू का हिदि की तांतो की नत्रा
5: यस फादर
3: प्रतिमा बाबा ngasi wakra hai na pun sta ipana tingara ang na ngasi pi chak tikli ri gi tung na chalam bi pratiman hai ne khalli ado matam na madi samaj ji madu wen ude ipagi thabag se pi ba phun na te ipagi pun si omor na te no moto ko ni dai gi thabag man sanon ai ru utpir ma bi pun khudim ne lo ne tokhra ni no si ki ben mi ta sangsar gi mari ka bani ipagi asadi nang na pur gu chana chin ne le ho ba asi ta ni नंग से दिशा ने नंग वोलीब मखई पा खाम गमी अदुगा मपान थोंगी समाज देदी नंग से थंग ही से नंग और बिन पी मचा अमने हर बिस नहीं पा करिन त चंगा रोय
9: Nupiga thoi be dharma di.
7: Ma pura bu belu na chala nimba asidane.
9: Ngami bu ma khay nangi na ning tamagi changa tu kathau. Orun kumara hai bishe nangi na pura bin hai bu nang khakau no. Mingon da kai be chatpa hai bishi. Dharma da chana bide samaj da kho kho le na makar bu angtani. Thau da usin na mingon da kho ba mangun pura kani hai bishe ipa thaja de. Nupiga di ki punshi di. Ma pura bin awa abda waba. Nungai bu wadra punshi shi lian duru binin hai pang di. Shati sabri tina mapuru bagi dong tak sih bagi lepak yang ngecali. Jom aku mai tiba piram lahir gama puru bubi hinggalan ki. Jagat ki mama wari bi jano ke shitana. Prabhu Ram Chandra cahita ramari bon cepu butungin bi wiki. Nanggum bi kerus letter bi nahan kerik kita mungkin na puru bubi aduk thawai dengan kan bagi. Cala cala cala temjer rasa. Cala cala cala.
0: Prati ma siu thangai maksih na budi ta da bimadi. Tarak laroi dabi nupi imrana shivu. Budi thapam thui. Mahakashi ma pung phana shaore, matikshana mahi haire. Hadudi, mahakashi di tashima ma hongnabi khangdrabi nupi imani. Mahakku thaduktanu satkhibana tana ayi pangala shikarishulerukta. Lupa, lupa li shimunga lauduna ayina mahakashi wu laubani. Hadudi, mahakashi di ayina thaduktanu satpashriyadri. Hauro, namang shulam, natung shutiya lebedo. Ayi kerja muksab sah, belum dah tahu ni.
9: Orang Kumar, ayi menurut lo ini tare. Yang u, nang bu ayi sabda sini pun dah tanam do, masih di nama angkara siaga lagi. Nama tiga nana lari lagi, tuh nama Mie Mie. Mie ini tangan bang ada nana thok masang ini nak kangen bang Mie Mie urham thole hujuk di cingan ini ayikar sulai tera. Sastra gigi hong lagi, mantra gigi nana, ayi lagi pratima abu kacih nong dalu hong menimita. Aikoi mi ubi di kau kibayai, nami thamai sing nungshit, prakriti ki posak pumbadi, khangna udna shakhi udna leini acumaran. Nakho chana warag le harag nang ini pibu puru yai phayumban, pukhla uli khatar ba samar chak thok chapam ini nabam miri pang basa sing mamangda. Punshi talo ini palu, abhavan chana shupaktana le pauk shem bangam balam jing mayra padna chalo prithi pumbagi. Khangalu mani purgi ning thiba saktam, mrattagi amra apur, lotna leiri basa inu mungi manigum. Punsi jis tes ni, aikoi kudingu artis ni, tele bukong cetta, sanggup itu dah angsi pula ibu ni nemui bahaya besar. Kalau bra orang, ayam bagi wakhan dah thongam dah buat nenawa. Take rest, think over, take rest, think over.
0: Tiama, salah salah, tum jauh ya ni potah jauh salah.
10: Ya ini masa kena sumleu.
0: Salah ni tiama tum jauh rosak.
10: Nahi masa keno, ikai dro. Kali ini sak kini sak kemarau na, amhal ini. Nah, nama lelaki macam, ayah buat ni, asli natro. Never, siap cello. Madu gede ia meti ay. Kali gini nak kumdi bersih buah. Oh, senti, ubi tu bahaya betul ni.
0: Kaya tu ini mata kerap orang pergi abdo. Nasi di hisap am thamna naba ay senti ubi tari.
10: Kali, ayah bu mata kerap orang hebat ngamba. Hayu, mulai kaya pun ayah pang. Kumdi dina, siado, ayah gini kongo. Habislo, istanda. Cek selu, madu kita ia meminta. Aina bawa dah, hai kerbani. Naha asih, amoh halak tuan pergi nih, understand?
0: Aina halai ibu sih napi, amah sung sumi ibu sih masih kangna halai ibu nih aye sih.
10: Madu ki ata?
0: Nang di sang hulla bener nih tambah sih mamu sih yai tiak napa?
10: Kali, aduk sih aku pakum. Yaina, aye hantar.
0: Tiama, sakino. Hantar u thar gado, kalin tak kana roy. Aye mai roy thado kram.
10: Thau na pergi dengan sih asih. बाबा की बिस्तरों पर ओ अच्छा मैं जाऊंगी ठीक करूंगी अशुंग न पंचाक रहा आई गले भी मेरे नासु हैंचा था तो आई ऊपर ले बकरीं था तो थोड़ी ना ऊपर
0: लम्बी हैं गनो
10: हैं गनी
0: त्यामा त्यामा लाओ है ये चलो न कोई की नहीं जय सेब ऐसे रे तमुशो न कोई की मेम सेब ऐसे ngau rada na aina punjan na thamawi edna ja sap sap lera tamso
10: baba la ka pisa tongan
0: pisa ara du du kana lan gani khanga bro la ku la pigi dre nang baba du bo
10: thona phare la kami singa se khangjo baba nan ha ku ji na pibang am
0: ain je le redi nang phajare ni
10: ayu nya no wale sur pula ta do si ayu nya no wale ni ta do si
0: lam henganu
10: henganu
0: ku ji ti ai bu ma sa khang le dna Ayo masa kangen dana, aduna lamhi dana, nanti jenah gian tana, liri kiri na, yum masa lelam gada bani. Ayo ngasih ni ni umni, thabak arubam sa thok tari, 아이 할락대 람가 힐름 랑고는 티레는 무고
10: 아시 착한
0: 오 파레다 디디 세시디 시험사로 살로나
10: 저는 아주 어디 살로
0: 아두 레레라 레이저 우바이드니드라
10: 아두 어디 라카니
0: 아두 올라오 세시 라오시네
10: 오 마이 굿 고 난 이부 시엔나 뽑이럭 레다나 망길레이 박다 마야기 캄포들 밑장 떠오드나
0: 파트라네 시보
10: 파약피에다 하요 아이 한번 펀스에 버리면 까리기노
0: 아이 꼬시니
10: 꼬시니 하이바
0: 꼬시니 꼬시 아이 예시고 난가 담무다이로 나 코에게 토목 독분에 달라봐 용기 까마다 하이바디 아와라 빠시 아마 딸레 핸드레 지엘곰나 마 담무다 난가 잉원다 양와라 와티 메이 모음마다 우시 타워이다 외왕왔다 양 따뜻한 시지나기 마 담무다 난가 잉원다 차티바 디카르 싱어도 마두 방난에 바이다 못다 난부 마 펌을 시랑한 시 담무다리군
10: 나만 금리 하이바디로 강정 마두가 디 야미에 띠 하요 마 펌을 색깔렴고 위
0: 좋아요, 고이버시. 뭐 부르고 이번에 막이 잘 담는 이유가 남까왜?
10: 야, 부하라, 까돌이봐. 오늘 아기 강호 성하시다. 남만 당가돌이봐. 아이는 폴리스 다칸.
0: 아이즈 폴리스 다다 다칸.
10: 까리 하이나.
0: 아이는 비싱아오래. 막 아시우즈다다 스티네 라잉 비우웨네 폴리스.
10: 아시나오리, 나오리, 나오리, 나오리.
0: 나오노. 까나다드레 라비인시. 마인터리 니판 니타 슬레트르블람 붓 마꾼 마트마.
10: 불, 불, 불, 불가름한.
0: 사크라, 사크라. 뭐, 또?
10: 나 호중을 못틀려 튼다고 야로
0: 뚜밀래요 뚜밀래게 담니 람현 야로
10: 바, 아몽 수부하드룰리 아이 샤양나 람에 샥샤리
0: 자오그는 샤, 샤
10: 이씨 나 사이기 호띠네게 던져지시로 아이고 숨사비 미따로
0: 자닝들의 이샤 토케네
10: 나하끼디니야 말고 마사부도 난기리 에비아신 에이나
0: 아두 월에를 사라하신 바 담모드나 나 사도 파르크나바
10: 아힝나시 뿡키아타크리
0: 오, 아씨 농자 이마 뚱현질리니
10: 아야 나 뚜밍에 뚜밍에 밤타와시 오 마이 굿고 파디 파라마르시다 아이나 뚜밍 이마 불불 라르마니 까리 까리 너 마이 게임 마니부터 콩이라오 이다시 따고 따들 까리
0: 따이 따이 따이
10: 따이 따이 니부 키 한마딩 암라가 키 한마 파마딩 암나보이
0: 키 파루라
10: 파루니
0: 아두디 난 아이나 하이바 와마카이 인바타이
10: 와마카이 하이바
0: 아이 하이나 보이 로이 로그다 바네바 난가 시대에 호라라 난게 퇴샷 왕천나라를 람살라세 마시 타도 기게다바니 아두가 마이때 이 누피미기 마타고마드라 자통 복수르다나 마샤 마이 샤바살라드나 니티제나 갸안타나 리리퀘린 레이게다바니 마샤
10: 아이 무사통바
0: 넘버 2 와실람 싱가다바니 피슈 피샹가다바니
10: 아이고 난게 실파르미도 비로
0: 넘버 3
10: 나게 와금타른다 타오 세 신샬로 기다 뚱게바 아와 비교 아픈 학다 레이브 신웅 아이비를 벌어 썰리시 가이도 보기 아 나시디니 가리그 뭐와 맞다 하자기 가리가리그 뭐 맞담다시오 타와이 야오나마 숭뿐인장 에부타우다 아두가 카모우드나 메이크업 아마기 마농다 님바 가리기 샷다마스 부도 보급 무이 매도 아이모는 아시리따 신 하이다비야 하이로 시 하이레로 들어 파리 아이 하쁘디나 하키니 파워 베건다 나이브는 나이브요. 아와브는 아와브요. 하이드는 스티만 토기 법탁님이란 비리. 아들아. 나기 타모에게 토럭바. 아시만은 시바 하이브도 어떻게 망한 비리를 냈다 보여.
0: 그러지마. 갑건. 마땅한 꾸인 하이드옥라로 이드노 칸드라 탐크라바. 아이게 와브이 허락과 비와리 신하도. 넘어 내가 시디타 시간을 리토하게 다로 그러지마. 아와브. 아이게 시야는 라르는 낭나 허락하바 마샤아니. 마땀마다 시엘라시기 다르카라 온토노 레르카바 아두부 아이기 시람바 시엘기 다르카라도 제 샤프키 타우잔데 콘비크 이마암 숭 이파니데 톨람바 미기 마란 푸나목 싱크 아이브누 미타고 마 카니르바 이파암 숭 이마 부죽 파우 힝누라 레디 타우반다 마 코이네 아이기데 먹다 칼람바 상사디 파르티마 아이네 우직 오이드나 나 코이 기시데 레리베시나티 미 카나마테 톨신 야우데나 라타 아이비누 피마샤마 아이기데 먹다 로홍니 하이베시 바바암 숭 이마 아니두기 상크로 와칼기 시엔 루피마사 라타 우직 파고 마임 반드리 바바 아무숭 이마 루피마사 라타 코이기 유밍 건다 우직 파고 다운드르레 칸드레 모도 프라티마 닝 바카르피 루피마사 라타 루기 와칼기 이시엘 방글리시 와라바 아이브나 피샤 피글링에 되기 요컷 피르 라바 바바 아무숭 분은 막 같이 칼루리르가 이기 카리 누가 탐레 에이 누가 탐 카르 슐레 트러블레 프라티마
10: 아레디 이시엠 살빌라타 루기 마나 테이분 토포비요 디비디가 막 콩데 토리 하르가 아이 하키 이라라시 나쿠이 하이도 묵다 하이지기
11: 얼음구만! 얼음구만! 얼음구만!
12: 헤이! 아이고 이제 왕왕 그래? 왕왕 나도 그래야 돼 봐
0: 여리 봐보 그리 이누나 참 빙이 보.
11: 예, 아이 무슨 소리야.

来把买把头根里你头那买笔头根来的呢王公生的的灵心里

आंगा यवा चौन कपकपदा समुडा खुलाकी करी उपाय लेजे दबन आंगा मथार छे जे कोले मतम सिद करी हाय रखली

시작이 되어 와배 꼭 했네 이마이 우빠이 딜레이 트리까 이마이 붕 와롱노 닝 토기 맞자 와롱노 아

आकाशवाणी इम्फाल खेत्रुमयुम चित्र भानु नपाउ पाजरी अहानबद मरु एबे पाउ मुख्यमंत्री युमनांग खेम चान हैरी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी संग सागपे की थबक चेयसगी दिसेंबर फाउ गी मनुंग द लुशिन नबा पांडम थमली राज्य की वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी सर्विसेस की डायरेक्टर ना हैरी राज्य से द युम दियोक पा यन गानु सिंग द रानी खेलेना संदोरक पथिंग नबा विभाग असे ना याम न खूब न यंगसिली मणिपुर के अल्ट्रा रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की फेज थ्री की थबक जिला जिला सिंह पैखट पहुनखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेंगसी नेदरलैंड्स के निंथो अमसुंग महारानी को नदुना लेबा नि के मरी फगन हन बि मतांग द ओरी शाने खरे अमसुंग नि यूजी परीक्षा की वहंग चेली हन बद चेन बनी हाइबा मरुई ब ओजानु पी अमा सीबीआई ने फारे इम्फाल वेस्ट जिला की कोकटूट सेंगवलीब नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की फीवम मुख्यमंत्री युमनांग खेमचान चतुने यंगसिंखरे पाउमी सिंह वांगांगबद मुख्यमंत्री युमनांग खेमचान लेबा से अहान लेमसनिंगाय ओरब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राज्य से सेंग सागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बु थागत पंगदोखी मांगना हाय यूनिवर्सिटी से सेंग सागत

0: सर, आइए मुक्ति चंजे रखे।
1: हाय लता, चंगो चंगो ये तो चंगो एक ही सेम्बर सीधा लाई थी कहीं तो रहा कहीं नो नंग ना अतो यंग कोई दुबो फामो एक तो फामो ने उन्हें किधर बस कोई रे कम दौड़े नुंगा दी था
0: उन्हें किधर बन सुपाई एक होई गदी याम न किनारे
1: अतो नंगला

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 12:31:16। तो आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में, जिसका नाम है हर सिंगार। हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गईं। शायर कहते हैं कि पर्दे में रहकर भी तू दिल में उतर जाता है, पर्दे में रहकर भी तू दिल में उतर जाता है, ये हुनर सिर्फ मोहब्बत को ही तो आता है। और बात जब पर्दे की चली है तो आज की इस महफिल का आगाज भी एक ऐसे ही नगमे से करते हैं जो रुख से पर्दा हटाने की बात कर रहा है। और ये सदाबहार नगमा है 1969 में आई फिल्म एक फूल दो माली से, जो आज भी सुनते ही चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान ले आता है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे बलराज साहनी, संजय खान, साधना, दुर्गा कोटे वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है प्रेम धवन साहब ने और राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है रवि ने। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का बहुत ही खूबसूरत और सदाबहार नगमा रवि साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में, जिसे लिखा है प्रेम धवन साहब ने और संगीत है रवि साहब का। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।

आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:39:10। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार में। अब बात एक ऐसी फिल्म की जो हमारे दिल के बेहद करीब है, आप सबके दिल के बेहद करीब है। ऐसी ही फिल्म जो अपने दौर की बहुत ही कामयाब फिल्मों में से एक थी और एशिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई और वो फिल्म है साल 1971 में रिलीज हुई कारवां। नासिर हुसैन साहब के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था जितेंद्र और आशा पारेख जी ने, जिनकी जोड़ी ने ऑन स्क्रीन कमाल कर दिखाया था और दर्शकों ने भी इसे बहुत सराहा था। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म का प्लॉट थोड़ा बहुत 1953 की एक अंग्रेजी फिल्म गर्ल ऑन द रन से प्रेरित था। उस फिल्म में जहां कहानी एक क्राइम ड्रामा और कार्निवल शो के इर्द गिर्द घूमती थी, वहीं कारवां में इसे बदलकर एक रंगीन बंजारा शो के बैकग्राउंड में पेश किया गया, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया। और इसका सबसे सकारात्मक पहलू यह था कि यह फिल्म बेहद खूबसूरत फिल्म इसलिए थी क्योंकि संगीत, इस फिल्म के संगीत ने इसकी कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार निभाया था। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था महान संगीतकार आर डी बर्मन साहब ने और गीत लिखे थे मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। वहीं अपनी जादुई आवाज से इन गानों को सजाया था लेजेंडरी सिंगर्स मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा जी, लता जी, किशोर कुमार साहब और खुद आर डी बर्मन साहब ने। यही वजह है कि इस फिल्म का हर गाना आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि कारवां भारत में तो सुपरहिट रही ही, लेकिन असली कमाल तब हुआ जब यह फिल्म 1979 में चीन में रिलीज हुई। वहां इसने विदेशी फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। बताया यह भी जाता है कि इस फिल्म ने एशिया में 30 करोड़ से भी ज्यादा टिकट्स बेचे थे, जिनमें से ज्यादातर चीन में ही बिके थे। आज भी महंगाई के नज़रिए से देखें तो कारवां भारतीय सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में गिनी जाती है। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है आर डी बर्मन साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में

मोहम्मद रफी साहब और लता जी की आवाजों में नगमा था फिल्म कारवां का बेहद खूबसूरत आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और महफिल सजी है सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार, और हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में अब बात अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत और जज्बाती फिल्म की, और वो फिल्म है साल 1974 में आई फिल्म रोटी। एक ऐसी फिल्म जो न सिर्फ आपको अंदर तक झकझोर देगी बल्कि हमारे समाज की इस कड़वी हकीकत से रूबरू करवाती है। जब गरीबी जो अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाती है, महलों में रहने वालों, अमीरों और जुर्म की दुनिया के बादशाहों के बीच फंसी यह गरीबी और उसकी जिंदगी और एक आम इंसान की पेट की भूख, रोटी जो अपने पेट को भरने के लिए इंसानियत को कत्ल कर देती है और हमेशा के लिए जुर्म के दलदल में फंस के रह जाती है। और यही वो हकीकत है जो हमारे समाज को आईना दिखाती है। मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था राजेश खन्ना, मुमताज, निरूपा रॉय, जगदीप, असरानी और कादर खान वगैरह ने। खास बात यह है कि इस फिल्म के दमदार डायलॉग्स लिखने के लिए कादर खान साहब को उस दौर में 1.21 लाख रुपए दिए गए थे, जो उस दौर में एक बड़ी रकम मानी जाती थी। यह फिल्म इतनी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले संवादों से सजी थी जिसको दर्शकों ने अपने इर्द गिर्द होने वाले वाकयात से जोड़ा और खूब सराहा। यह फिल्म इतनी कामयाब हुई कि बाद में इसको अलग अलग भाषाओं में फिर से बनाया गया, पहले तेलुगु भाषा में और फिर बांग्लादेश में इसको बनाया गया, जो वहां भी कामयाब रही। तो आइए इसे फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत और सदाबहार नगमा हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार साहब और लता मंगेशकर जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में, जिसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब की जोड़ी ने। इस नगमे में गोरे रंग, चेहरे और खूबसूरती को और उसके घमंड के बारे में बातें की गई है।

0: किशोर कुमार साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में नगमा था फिल्म रोटी से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं इस वक्त आप, और महफिल सजी है सदाबहार गीतों की हर सिंगार, और हर सिंगार की महफिल में अब बात हिंदी फिल्मों की कव्वाली की। दोस्तों, बॉलीवुड की कव्वाली सिर्फ कव्वाली नहीं होती, बल्कि ये एक मुकाबला होता है दिलों का, अल्फाज का और जज्बात का। ताली की गूंज, हारमोनियम की धुन और जवाबी शेर सब मिलकर बना देते हैं एक ऐसा यादगार नज़ारा जो हमारे दिल में बस जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही खूबसूरत कव्वाली की। ये शानदार कव्वाली है फिल्म हंसते जख्म से, जो फिल्म आई थी 1973 में। इस कव्वाली को एक ऐसी ही खूबसूरत कव्वाली की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कव्वाली को अपनी जादुई आवाज दी मोहम्मद रफी साहब और एस बलबीर ने। इसके दिल को छू लेने वाले अल्फाज से लिखा है मशहूर शायर कैफी आजमी साहब ने, और इसे बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजाया है संगीतकार मदन मोहन साहब ने। इस कव्वाली की खास बात यह है कि इसका अंदाज थोड़ा शरारत, थोड़ा इश्क और थोड़ी सी नोकझोंक। कव्वाली में सवाल जवाब का ऐसा सिलसिला चलता है कि सुनने वाला खुद को उस महफिल का हिस्सा महसूस करने लगता है, जहां मोहब्बत को हल्के फुल्के अंदाज में मजाक और तंज के साथ पेश किया गया है। तो आइए आप भी सुनिए और महसूस कीजिए इस जज्बात को। आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और इस बलबीर की।
1: झुकाना ही पड़ा

नहीं पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

0: ऐसी कवाली के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत. अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद मैं रहूंगा एक बार फिर से आपके साथ ठीक 11:10 पर गीत मेरे मनमीत लेकर. तब तक के लिए आदाब.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं. पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है. उन्होंने कहा कि यदि चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है. प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है.
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है. भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है. भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है. मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं. इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है. इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई. ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है. संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी. बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे. स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है. दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है. विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा. एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी. विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की. कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे. सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है. बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए. भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है. भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था. उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है. गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhumi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
3: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he's attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashwani, the Ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11 और 13 सेकेंड। उबैदुल्ला सिद्दीकी कहते हैं कि जिंदगी एक ख्वाब है, ये ख्वाब की ताबीर है। जिंदगी एक ख्वाब है, ये ख्वाब की ताबीर है। हल्का है कि सुए दुनिया पांव की जंजीर है। कुछ नहीं इसके सिवा मेरे तसर्रुफ में यहाँ, कुछ नहीं इसके सिवा मेरे तसर्रुफ में यहाँ। दिल का बस जितना इलाका दर्द की जागीर है। जी हाँ, जिंदगी इसी का नाम है और जिंदगी यूं ही चलती रहती है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ जिंदगी की, क्योंकि अगला नगमा जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलोस आदाब। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में सुनहरे दौर के उन्हीं नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है, जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। ऐसा ही एक नगमा है 1956 में आई एक फिल्म जागते रहो से। इस फिल्म के लेखक है ख्वाजा अहमद अब्बास साहब और इसका निर्देशन किया है सोमभू मित्रा ने। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में राज कपूर साहब, नरगिस, प्रदीप कुमार, सुमित्रा देवी, स्मृति विश्वास, सुलोचना चटर्जी, डेजी ईरानी वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा है शैलेंद्र ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल गीत मेरे मनमीत में। और गीत मेरे मनमीत में वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:26 और 28 सेकेंड। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में उन चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो नगमे आपके दिल के बेहद करीब हैं। कुछ नगमे ऐसे हैं जिन्हें आप बार बार सुनते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं, और कुछ नगमे ऐसे भी हैं जो ख़ास तौर से हम आपके लिए चुन कर लाए हैं, आपके लिए, जिन्हें शायद ही आपने सुना होगा, लेकिन है ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा ये नगमा। और अगला नगमा कुछ ऐसा ही है और ये नगमा है फिल्म परवरिश से। ये फिल्म आई थी 1958 में। सागर उस्मानी द्वारा लिखित इस फिल्म के निर्देशक थे एस बैनर्जी। और इस फिल्म में जिन लोगों ने अहम किरदार निभाया था वो थे राज कपूर साहब, माला सिन्हा, महमूद, नासिर हुसैन और ललिता पवार वगैरह ने। इस फिल्म के सारे ही नगमे बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत हैं, जिसमें अपनी आवाज़ें बख्शी हैं मुकेश, लता जी, मन्ना डे साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा भोसले। उन्हीं नगमों में से एक ऐसा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं जो फिल्माया गया है महमूद साहब और शोमैन राज कपूर साहब। इस नगमे को आप देखेंगे अगर पर्दे पर तो उन दोनों का तालमेल गाने के साथ इतना खूबसूरत लगता है जिसे आप बार बार देखना चाहेंगे और गुनगुनाना भी चाहेंगे। तो आइए वही नगमा हम आपको सुनते हैं, सुनवाते हैं, और आप भी उस नगमे में खो जाइए इस बहुत ही खूबसूरत रिदम के साथ।

अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है, वफादारी का शिकवा क्या जमाना ये ही।

बारिश फिल्म का ये नगमा था और आवाजें थी मोहम्मद रफी साहब और मन्ना डे साहब की बेहद खूबसूरत ये नगमा। इस नगमे को जब भी आप पर्दे पर देखेंगे तो इन दोनों की जुगलबंदी यानी इस नगमे के साथ साथ राज कपूर साहब और महमूद की जुगलबंदी देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जिस तरीके की जुगलबंदी इस नगमे में है वो सचमुच बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारी है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं, यानी गोल्डन एरा के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। और ऐसे ही एक और नगमे के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ये नगमा है फिल्म 1959 में आई दिल दे के देखो से। नाज़िर हुसैन साहब के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था शमी कपूर, आशा पारेख, सुलोचना लटकर, राजा राज मेहरा, राजेंद्र नाथ, सुरेंद्र, इंदिरा बिल्ली, मुमताज अली, मलिका वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है उषा खन्ना ने। तो आइए इसे फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ में।

मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये नगमा था फिल्म दिल देखे देखो। ये नगमा बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा था। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म, सुनहरे दौर की फिल्म से, जो बनी थी आर के नायर के निर्देशन में और जिसे लिखा था आगा जानी और आर के नायर ने। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था बेहद खूबसूरत जॉय मुखर्जी, साधना किशोर साहू, शोभना सामर्थ, दुर्गा खोटे, हरी शिवदासानी, रवि टंडन वगैरह ने। ये बेहद खूबसूरत फिल्म थी अपने दौर की और बहुत ही खूबसूरत इसके नगमे भी थे। ये फिल्म आई थी 1960 में। इस फिल्म के गीतों को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और बेहद खूबसूरत संगीत से सवारा था इकबाल कुरैशी साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याण की, कल्याणपुर की, बहुत ही प्यारी आवाज़ों में।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए एफएम गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ एफएम गोल्ड 100.1।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का मैं फेरोज शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल गीत मेरे मन मीत की। इस महफिल में बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं। ये वो दौर है, ये वो नगमे हैं जब हम सबके दिल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पुरानी यादें एक बार फिर से ताज़ा हो जाती हैं इन पुराने नगमों को जब सुनते हैं। तो ये वो दौर था, और वो दौर था 1947 के बाद से लेकर 1965 तक का, जिसे हम गोल्डन एरा या सुनहरा दौर हम कहते हैं। उसी दौर में एक फिल्म आई थी धूल का फूल, और ये फिल्म आई थी 1959 में। यश चोपड़ा साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार, नंदा, मनमोहन कृष्ण, अशोक कुमार वगैरह ने। यह फिल्म अपने दौर की बहुत ही खूबसूरत फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के गीतों को लिखा है

रजवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है इन दत्ता ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में आपके लिए।

0: आशा जी की आवाज़ में नगमा था फिल्म गहरा दाग से, और यह फिल्म आई थी 1963 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। और दोस्तों वक्त हो चुका है अब आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले एक और बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। नगमा नहीं, ये कव्वाली है जो यकीनन आपको पसंद आएगी। शमशाद बेगम और आशा भोसले जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में यह कव्वाली है फिल्म चौधवी का चांद से, और यह फिल्म आई थी 1960 में। इस फिल्म के निर्देशक थे एम सादिक, और इस फिल्म में जिन लोगों ने मुख्य किरदार निभाया था वो थे गुरुदत्त साहब, वहीदा रहमान, फरीदा जलाल, जॉनी वॉकर, मीनू मुमताज़, मुमताज़ बेगम और टुनटुन वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है हम सब के प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, और इसमें बहुत ही खूबसूरत गीत हैं जिसमें म्यूजिक दिया है रवि साहब ने, और ये नगमा है फिल्म चौधरी का चांद से। आवाज़ें हैं शमशाद बेगम और आशा भोसले की।
1: शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशीं,

शमशाद बेगम और आशा भोसले जी की इन्हीं आवाज़ों के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाज़त। इस कव्वाली को लिखा था शकील बदायूनी साहब ने और बेहद खूबसूरत संगीत से सवारा था रवि ने। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी हमारी मुलाकात। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद सुरभि रहेंगे आपके साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति ने अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार के संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। रूस

0: FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुनना मत भूलिएगा।
1: 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आप ही की आवाज मंजू। पानी पर लिखी कहानी में आज मैं सुनाने जा रही हूं अपनी ही लिखी कहानी अपनी ही आवाज में, जीत हौसलों की। शिवांगी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पद संभालने जा रही है। आखिर उप मुख्यमंत्री होना कोई साधारण बात तो नहीं, और वो भी सबसे युवा उप मुख्यमंत्री होना। ये बात उसको रोमांच से ज्यादा गौरव से भर रही है। पूर्ण बहुमत से बनी सरकार ने उसे और भी आत्मविश्वास से भर दिया है। शिवांगी की कार धीरे धीरे शपथ समारोह के मैदान की तरफ बढ़ रही है। अब से थोड़ी ही देर में उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी होगी। शिवांगी के दिल में गड़े हुए कांच आज उसे चुभ नहीं रहे थे, बल्कि वो मन ही मन उन लोगों का धन्यवाद कर रही थी जिन्होंने उसके भीतर उन कांच के टुकड़ों को बोया था। अब तक जिंदगी उसने फांकों में ही तो जी थी, लेकिन आज वक्त एक ऐसे फ्रेम में कैद है जो सिर्फ शिवांगी की वकालत में खड़ा है। शिवांगी बेखौफ और आजाद।

शिवांगी की आंखें खुशी के आंसुओं से छलक रही थी और मन यादों की गलियों में घूम रहा था। कितनी जिद्दी रही है शिवांगी बचपन से ही। टॉपर होने के बावजूद उसने अपने दोस्तों की तरह कॉमर्स और साइंस नहीं लिया बल्कि आर्ट्स लिया था, जिसे कई बार एवरेज स्टूडेंट का सब्जेक्ट कह दिया जाता है। अपनी साइंस की मैम के बहुत डांटने पर उसने जवाब देते हुए कहा था, मैम मुझे प्रैक्टिकल लैब में एक अजीब सी घुटन होती है, साइंस में मुझे इतनी ग्रेविटी नहीं लगी जो मुझे अपनी ओर खींच सके। चीजों की तो पीएच वैल्यू है पर जिंदगी की पीएच वैल्यू क्या हो? एक सिक्के के हेड टेल की प्रोबेबिलिटी से होते हुए ताश के 52 पत्तों की प्रायिकता की संभावना गणित के पास है, पर क्या कोई गणितज्ञ गिन पाएगा जिंदगी की प्रायिकता को? जो सब्जेक्ट जिंदगी के सवालों का जवाब ना दे उसे पढ़ने का क्या फायदा मैम? अच्छा बाबा अब तुम्हें कौन समझाए, जो मन करे सो करो, तुम तो हमें ही ज्ञान दे देती हो। समाज में मौजूद अव्यवस्था शिवांगी के मन में बेचैनी पैदा करती है। परिवार को लगता है कि शिवांगी अभी छोटी है इसलिए जिद्दी है, बड़ी होगी तो शायद सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका विरोधी स्वभाव उम्र के साथ लगातार बढ़ता चला जाता है।

ट्वेल्थ में शिवांगी के अच्छे मार्क्स आए थे और उसने इवनिंग कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन ले लिया था क्योंकि ये सब्जेक्ट उसे उसके कई सवालों का जवाब देता है। कॉलेज की लाइब्रेरी उसके सुकून का कोना है। एक दिन लाइब्रेरी में बुक इश्यू कराते हुए शिवांगी ने नोटिस किया कि वो अपना लाइब्रेरी कार्ड घर बुलाई है। वह अपनी लाइब्रेरियन से बहुत रिक्वेस्ट करती है और कहती है, मैम मैंने इन किताबों को बहुत मुश्किल से ढूंढा है, आप प्लीज इन किताबों को साइड में रख दीजिए, मैं कल अपना लाइब्रेरी कार्ड लाकर इन्हें इश्यू करा लूंगी। पर लाइब्रेरियन नहीं मानती। लाइन में खड़े सभी स्टूडेंट्स परेशान होने लगते हैं। आदित्य जो कि शिवांगी का क्लासमेट है उसके पीछे खड़ा है, वो कहता है, एक्सक्यूज मी मैम, मैम मुझे एक ही बुक इशू करानी है, आप मेरे कार्ड पर इनकी बुक इशू करा दीजिए। थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच, इट्स ओके शिवांगी। अच्छा शिवांगी प्लीज डोंट माइंड, मैं अपनी फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस की वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास नहीं ले पाया। तुम्हारी तैयारी कैसी है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने तो उसके कुछ नोट्स भी बनाए हैं, मैं कल तुम्हारे लिए ले आऊं। ओह थैंक यू सो मच शिवांगी, थैंक यू सो मच। कॉफी ब्रेक में शिवांगी आदित्य से वीमेन इश्यूज पर बहुत सी बातें करती है और उसे बताती है कि रात को इवनिंग कॉलेज से घर लौटने में लड़कियों को कितनी दिक्कत होती है। धीरे धीरे शिवांगी और आदित्य की नजदीकियां बढ़ने लगती है और उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई

कॉलेज फेस्ट पर पूरे कॉलेज को डेकोरेट किया जाता है। फाइन आर्ट सोसाइटी ने कॉलेज ग्राउंड में एक बड़ा सा दिल सेल्फी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बना दिया था, जो स्टूडेंट की धड़कन बना हुआ था। कुछ स्टूडेंट्स वहां पर सेल्फी ले रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स वहां खड़े होकर लव पोइट्री सुना रहे थे, कुछ कपल्स आपस में एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे। इस भीड़ में खड़ा आदित्य शिवांगी के साथ डांस करने के ख्यालों में डूबा हुआ है, पर शिवांगी है कहाँ? शिवांगी तो कहीं नजर नहीं आ रही। आदित्य शिवांगी को फोन करता है। कहाँ हो तुम? कैंटीन में। वहां क्या कर रही हो? कैंटीन का वाटर कूलर खराब हो गया है। तो मैं कैंटीन वालों की प्रिंसिपल मैम से कंप्लेन करूंगी। रुको रुको नारी शक्ति, रुको तो सही। अच्छा मैं आता हूं। ये कैसी लड़की पे दिल आया है मेरा? मैं यहां दिल का गुलदस्ता लिए घूम रहा हूं और मेरी प्रेमिका उलझी हुई है कैंटीन के वाटर कूलर में। हे प्रेम की देवी, मेरी प्रेमिका को कुछ बुद्धि दे। आदित्य ने कैंटीन में जाकर देखा, शिवांगी ने पूरे कैंटीन स्टाफ को सर पर उठा रखा है। शिवांगी, ये क्या बदतमीजी है? इसमें बदतमीजी की क्या बात है आदित्य? तुम नहीं जानते, ये लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। कॉलेज में जब भी कोई फंक्शन होता है, ये लोग वाटर कूलर खराब कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स वाटर बॉटल खरीदें और इनकी कमाई हो। पर आज मैं लोगों की प्रिंसिपल मैम से कंप्लेन करके रहूंगी, और देखो मैंने एप्लीकेशन भी लिख ली है। शिवांगी, तुम कॉलेज में नजरे घुमाकर तो देखो आज क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है। आदित्य, तुम नजरे घुमाकर देखो ना, आज ही के दिन कितने स्टूडेंट्स खराब पानी पीने के लिए बेबस हैं। तो तुमने क्या सारे स्टूडेंट्स का ठेका ले रखा है?

मुझे ये समस्याएं बहुत अंदर तक प्रभावित करती हैं आदित्य। अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा तो मुझे नहीं लगता कि हमारा रिलेशनशिप बहुत आगे तक जा पाएगा। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ रही हो? हाँ लड़ रही हूँ। तुमने मुझसे कोई परमिशन क्यों नहीं ली? इसमें तुमसे परमिशन की क्या जरूरत है आदित्य? तुम फुटबॉल मैच के लिए बेंगलुरु गए, तुमने मुझसे पूछा था। शिवांगी, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और इस रिलेशनशिप को बचाना चाहती हो तो तुम्हें स्टूडेंट यूनियन के चुनाव से अपना नाम वापस लेना होगा। आदित्य, ये कैसी शर्त रखी है तुमने मेरे सामने? तुम मुझसे मेरी जिंदगी छीन रहे हो? तुम प्यार को समझौते में बदलना चाहते हो? वो मैं नहीं जानता शिवांगी, पर मेरी शर्त यही रहेगी। तो फिर आदित्य, मेरा फैसला भी अड़िग रहेगा और मैं चुनाव लड़ूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत शिवांगी? कहते हुए आदित्य ने शिवांगी को जोर से धक्का दिया, जिससे शिवांगी गिर जाती है और उसके शरीर में कई चोटें भी आती हैं। पर ये चोटें उसकी एपिथीलियम की खुरच भर नहीं है, बल्कि उसके दिल में बहुत गहराई तक धसे हुए कांच हैं।

आदित्य शिवांगी से बदला लेना चाहता है और इसके लिए वो शिवांगी की सभी चुनावी रणनीतियों को उसके विरोध में खड़े उम्मीदवारों को बता देता है। आदित्य का ऐसा रूप देखकर शिवांगी को आदित्य से नफरत हो जाती है। शिवांगी को लेकर साजिशें रची जाती है। पूरे कैंपस में शिवांगी की खराब इमेज का प्रचार प्रसार किया जाता है, पर शिवांगी हार नहीं मानती। शिवांगी अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करती है और उसे उम्मीद होती है कि उसके काम को जरूर नोटिस किया जाएगा। आदित्य का भाई स्पोर्ट्स यूनियन का प्रेसिडेंट

सकता है और इसी का फायदा उठाकर आदित्य अपने भाई के साथ मिलकर शिवांगी के खिलाफ कैंपेनिंग करता है और इसका नतीजा ये होता है कि स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स का एक भी वोट शिवांगी के फेवर में नहीं जाता और शिवांगी चुनाव हार जाती है। चुनाव परिणाम से ज्यादा शिवांगी आदित्य के घिनौने रूप से आहत होती है। आदित्य की व्यंग्यात्मक मुस्कान के जवाब में शिवांगी ने कहा, आदित्य मैंने चुनाव हारा है, हौसला नहीं।

एक दिन यूनियन रूम में बैठी शिवांगी घर जाने के लिए काम समेट ही रही थी कि तभी हिस्ट्री ऑनर्स की स्टूडेंट लतिका अपनी प्रॉब्लम लेकर आती है. मैं कमिन दी. यस प्लीज. लतिका कैसी हो? बहुत उदास लग रही हो, क्या हुआ? दी, वो मेडिवल हिस्ट्री वाले सर है ना? कौन, वो कैब ड्राइवर? दी, आप भी जानते हैं उसके बारे में? पूरा कैंपस जानता है उसके बारे में. तुम्हें क्या कहा है ये बताओ. दी, वो सर लड़कियों को कॉफ़ी पे ले जाते हैं. उन्होंने मुझे भी कॉफ़ी के लिए ऑफ़र दिया था पर मैंने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए एग्ज़ाम में मेरे डेस्क के नीचे जानबूझकर किसी से चीटिंग चिट रखवा दी थी और नकल करने का आरोप मुझ पर लगा दिया गया. मैं इस घटना से बहुत डर गई हूँ दी. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए. प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए. ओके लतिका, तुम ऐसा करो, उन सर को कहो कि मैं कॉफ़ी पर जाने के लिए तैयार हूँ. तुम अपनी लाइव लोकेशन हमें भेजती रहना, मैं पुलिस से बात करती हूँ. उसे रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे और यही उसकी सजा होगी. दोनों ऐसा ही करती हैं और अंततः उस सर को रेस्टिगेट कर दिया जाता है.

शिवांगी महिला सुरक्षा को लेकर बहुत से आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में लिखती है। वो अपने आर्टिकल्स के माध्यम से बताती है कि वीमेन सिक्योरिटी को लेकर कॉलेज कैंपस में किस तरह से और बेहतर काम किया जा सकता है, क्योंकि लड़कियों की ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। सुनसान सड़कें और अंधेरा लड़कियों के लिए ही डर का पर्याय क्यों हूँ। शिवांगी के आर्टिकल्स इतने ज्यादा लोकप्रिय होते हैं कि उसे अपने एक आर्टिकल के लिए मुख्यमंत्री से पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है और युवा प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री से महिला सुरक्षा पर बात करने का मौका भी मिलता है। मुख्यमंत्री रेणुका सिंघानिया एक बहुत ही अनुभवी, सक्षम और ईमानदार महिला हैं, जो कि जन जन में लोकप्रिय हैं। एक संवेदनशील महिला होने के नाते महिलाओं का दर्द ना केवल समझती हैं, बल्कि उनके प्रति सहानुभूति भी रखती हैं। मुख्यमंत्री रेणुका सिंघानिया की नई युवा शक्ति को पार्टी में सम्मिलित करने की इच्छा सदैव से रही है। वो शिवांगी को भी प्रेरित करती हैं कि वो और भी बेहतर काम करे, जिसमें उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से शिवांगी को पूरा सहयोग दिया जाएगा। शिवांगी यूनिवर्सिटीज और कई जगहों पर महिला सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर काम करती है। धीरे धीरे शिवांगी टीवी चैनलों की एक लोकप्रिय प्रवक्ता बन जाती है। समय बीतता जाता है और शिवांगी का कार्य और भी फैलता जाता है। जनता जानती है कि चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, छात्रों की समस्याओं की बात हो, चाहे युवा शक्ति की बात हो, अगर पार्टी में कोई पूरे अधिकार के साथ बोल सकता है तो वो नाम है शिवांगी। एक ईमानदार कार्यकर्ता और विद्वान प्रवक्ता के रूप में शिवांगी की छवि जनता के सामने उभर कर आती है। मुख्यमंत्री रेणुका सिंघानिया स्त्री मामलों में हमेशा ही शिवांगी से परामर्श लेती रही हैं। धीरे धीरे समय करवट बदलता है। अगले चुनावों में रेणुका जी जब फिर से बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनती हैं, तो उप मुख्यमंत्री के रूप में शिवांगी को चुनती हैं। शिवांगी यादों के गलियारों से लौट आती है। आज उसकी जीत का दिन है, उसके काम की जीत का दिन है। ये पद, ये गौरव उसने अपनी मेहनत और परिश्रम के बलबूते जीता है। शिवांगी ने कार का शीशा नीचे किया, उसके नाम की, मुख्यमंत्री के नाम की, पार्टी के नाम की नारेबाजी हो रही थी। सफेद बनारसी साड़ी में लिपटी शिवांगी ने आत्मविश्वास को अपने आभूषण के रूप में पहना हुआ है। मुख्यमंत्री रेणुका सिंघानिया जनता को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मैं शिवांगी को उप मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि अपनी बेटी के रूप में आप सभी के बीच भेज रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि शिवांगी को बेटी की तरह ही जनता का प्यार मिलेगा। शिवांगी एक नजर रेणुका जी की तरफ और एक नजर मंच से नीचे फर्स्ट रो में बैठी अपनी माँ की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है कि ये उसकी जीत नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत है, जिस पर उसकी दोनों माओं के हस्ताक्षर हैं।

0: दोस्तों, पानी पी लिखी कहानी में आज मैं सुना रही थी अपनी ही लिखी कहानी, अपनी ही जुबानी, जीत हौसलों की। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपकी प्रतिक्रिया हमें अगली कहानी को और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। इसके अलावा आप हमें ईमेल के माध्यम से भी अपने संदेश पहुंचा सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com पर। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति, परिकल्पना और निर्देशन है रश्मि कुकरेती का। पानी पी लिखी कहानी में आज के लिए इतना ही। मुझे यानी मंजू बत्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: पानी पर लिखी कहानी। जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से, सारे वादे भर गए। पानी पर लिखी कहानी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही हैं। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार के संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं सुरभि आपके साथ. नमस्कार. महकी हुई फिजाएं दे कुछ आसमान दे, महकी हुई फिजाएं दे कुछ आसमान दे, अगर हो सके तो हमको एक नया जहान दे, आंखों को हौसला दे कि वो देखें कोई ख्वाब, ख्वाबों के हौसलों को मुसलसल उड़ान दे. तो चलिए गीत संगीत की बहुत ही खूबसूरत महफिल में आपको ले आए हैं, तैयार हो जाइए बहुत ही सुरीले नगमों, कुछ बातों और यादों के सफ़र पर चलने के लिए अगले कुछ पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आपके नाम. तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ. फिल्म का नाम है अनुरोध. किशोरदा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में सुनते हैं ये गीत आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर.

गीत सुहाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ। जी हाँ दोस्तों, दिल के कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो दिल के कोने में कहीं चुपचाप बस जाते हैं, ना वो पूरी तरह से भुलाए जाते हैं और ना कभी वो दूर होते हैं। यकीनन वो याद बनकर हर धड़कन के साथ चलते रहते हैं। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूँ सुरभि। दोस्तों, कुछ गीतों का जादू ही ऐसा होता है जिसे सुनकर मन तन सब खिल उठते हैं, जहाँ प्यार में नज़ाकत भी होती है, शरारत भी, और दिल को छू लेने वाली मिठास भी उन गीतों में पाई जाती है। और जब सुरों में मोहब्बत खुल जाए तो हर लम्हा बेहद हसीन लगने लगता है। तो इसी खूबसूरत अंदाज के साथ चलिए हम आप सुनते हैं मिलकर फिल्म आरजू का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में। किसी ने बहुत खूब कहा है कि किसी की प्यास का तुमको जवाब होना था, किसी की प्यास का तुमको जवाब होना था, मुझे जवाब में बस लाजवाब होना था। किसी की प्यास का तुमको जवाब होना था, मुझे जवाब में बस लाजवाब होना था। वो मेरे रूबरू ताबीर बन के आया है, तमाम उम्र जिसे सिर्फ ख्वाब होना था।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग, यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

जी हाँ, कुछ गीतों में नटखटपन होता है, शरारतें होती हैं और हल्का फुल्का अंदाज दिल को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए और खूबसूरत गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, माहौल को हल्का फुल्का रंगीन बनाते हैं इस बहुत ही चुलबुले गीत के साथ। तो फिल्म है इंसान जाग उठा, चलिए सुनते हैं ये गीत।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। धीरे धीरे हम अपने वक्त के अंजाम तक पहुंच चुके हैं, तो बहुत खूब कहा है किसी ने कि वक्त के साथ चला जाए यही बेहतर है, वक्त के साथ ढला जाए यही बेहतर है। उम्र के अपने तकाजे हैं जरा गौर करें, उम्र के अपने तकाजे हैं जरा गौर करें, इसको बिल्कुल भी ना चला जाए यही बेहतर है, वक्त के साथ चला जाए यही बेहतर है, वक्त के साथ ढला जाए यही बेहतर है। अश्क का झरना लगातार बहे और तेरी याद की चिट्ठी जला जाए यही बेहतर है, बेसबब अपनी ही फितरत को बदलने की बजाय चंद आंखों में खला जाए यही बेहतर है, वक्त के साथ ढला जाए यही बेहतर है, वक्त के साथ चला जाए यही बेहतर है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। यह संबंध आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रहे हैं। इस संबंध की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कड़ी नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 में स्वीडन यात्रा की शताब्दी से जुड़ी है। अब यह साझेदारी सांस्कृतिक आधार से आगे बढ़कर मजबूत औद्योगिक और आर्थिक सहयोग में बदल रही है। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज और कल स्वीडन के गोथेनबर्ग के दौरे पर रहेंगे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने कल डोमिनिका की विदेश मंत्री के साथ फार्माकोपिया और त्वरित प्रभाव परियोजना QIP पर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। श्री मार्गरिटा ने डोमिनिका के विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा ऊर्जा मंत्री विंस एंडरसन से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में एविएशन टर्बाइन फ्यूल FTA पर लगने वाले वैट को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के विजन के अनुरूप लिया गया है और इसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र को राहत देना, पर्यटन को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक गतिविधियों को गति प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि रियायती वैट दर फिलहाल 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और दिल्ली के हित में लिया गया यह फैसला सरकार के लिए लगभग 985 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व नुकसान का कारण बन सकता है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। मामले के एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है, जिसने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि संजय रॉय ने अपनी रिहाई की अपील की थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकियों की तलाश के लिए बहुक्षेत्रीय तलाशी अभियान शुरू किया है। ये कार्रवाई मेंढर तहसील के मनकोट क्षेत्र में 12 मई को ही उस घुसपैठ की कोशिश के बाद शुरू की गई है, जिसमें एक घुसपैठिया मारा गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis. He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role and describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values. Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he's attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of the India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praise the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marked a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands on Friday on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden today. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashvani, the ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations. Head of Engineering and Product Development at Artifex in Sweden, Per Sundvall, expressed optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and the Europe arising from the India-European Union Free Trade Agreement. Electronics manufacturing company Tata Electronics and Dutch semiconductor equipment major ASML have joined hands to enable chip manufacturing in India. The pact was announced during Prime Minister Narendra Modi's visit to the Netherlands. ASML is known for having a monopoly in a category of lithography equipment, which is critical for production of advanced small-size semiconductors. India has rejected the latest award issued by the so-called Court of Arbitration on the Indus Waters Treaty dispute with Pakistan. Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said India does not recognize the code and considers it to be illegally constituted. He said any decision or award issued by the court is null and void. The spokesperson said the court has issued a supplementary award related to maximum bondage under the Indus Waters Treaty. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has made the study of three languages compulsory for students from class 9 beginning from the 1st of July this year. In a statement, the board said that at least two of the three languages must be native Indian languages in line with the National Education Policy 2020 and the National Curriculum Framework for School Education 2023. In IPL cricket, host Kolkata Knight Riders defeated Gujarat Titans by 29 runs wickets at the Eden Garden, Kolkata last night. Chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans made 218 runs, the loss of 4 wickets in the stipulated 20 overs. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 247 for 2 in the stipulated 20 overs. Earlier, Gujarat Titans won the toss and elected to field. At the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar, India's Sanjana has won 3 bronze medals in the women's 76-77 kilogram category. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं सुरभि हाजिर हूँ आपके बीच। नमस्कार। बहुत खूब कहा है किसी ने कि कभी यूं भी आ मेरी आंख में, कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो, मुझे एक रात नवाज दे, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर ना हो। मेरे बाजुओं में थकी थकी अभी महवे ख्वाब खोई है चांदनी, न उठे सितारों की पालकी अभी आहटों का गुजर न हो। ये गजल है जैसे हिरन की आंख में पिछले रात की चांदनी, न बुझे खराबे की रोशनी कभी बेचराग ये घर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे कि उसके बाद सहर न हो।

कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। दिल बस इतना जानता है कि जब कोई खास करीब हो तो सब कुछ अपना लगने लगता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म देव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात सुरमई सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। दोस्तों, जब दिल किसी की यादों में खो जाए तो ये रातें लंबी लगने लगती हैं और नींद भी जैसे रूठ सी जाती है। मोहब्बत का यही मीठा सा असर दिल को बेचैन भी करता है और मुस्कुराने की वजह भी बन जाता है।

ख्वाब इन आंखों से अब चुरा कर ले जाए, कब्र के सूखे हुए फूल उठा कर ले जाए। ये भी पानी है मगर आंखों का ऐसा पानी, जो हथेली पे रची मेहंदी उड़ा कर ले जाए। मैं मोहब्बत में महकता हुआ खत हूँ मुझको, मैं मोहब्बत में महकता हुआ खत हूँ मुझको, जिंदगी अपनी किताबों में दबा कर ले जाए, ख्वाब इस आंखों से अब कोई चुरा कर ले जाए।

मुझसे बिछड़ कर खुश रहते हो, मुझसे बिछड़ कर खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। एक टहनी पर चांद टिका था, मैं ये समझा तुम बैठे हो। मुझसे बिछड़ कर खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। और चलिए चलते चलते मोहरा फिल्म से सुनते हैं पंकज उदास साहब की आवाज़ में ये गीत।

इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। और अब सुरभि को दीजिए इजाजत, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। यह संबंध आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज और कल स्वीडन के गोथेनबर्ग के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और हरित परिवर्तन, AI प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जन संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन भी मौजूद रहेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। अहमदाबाद और गांधीनगर में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय में श्री शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर के आधुनिकीकरण और घाट लोडिया, गोटा, चांद लोडिया तथा थलतेज क्षेत्रों में जिलों को जोड़ने की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर दिया था। मामले के एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है, जिसने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि संजय रॉय ने अपनी रिहाई की अपील की थी। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और CRPF ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 माओवादियों को गिरफ्तार किया है और 5 अन्य माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। गिरफ्तार किए गए 8 माओवादियों में 2 संभागीय समिति सदस्य और 2 प्लाटून पार्टी समिति सदस्य शामिल हैं। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटन्स को 29 रन से हरा दिया। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनील नारायण ने 2 ओवर में 29 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जब दो सुर मिलते हैं तब सिर्फ संगीत नहीं बनता बल्कि भावनाओं की एक नई कहानी जन्म लेती है। कभी प्यार, कभी तकरार, कभी दोस्ती तो कभी शरारत। हर एहसास को युगल गीतों ने बेहद खूबसूरती से सजाया है, संवारा है। तो चलिए आज हमराही के जरिए चलते हैं, सुनते हैं कुछ ऐसे ही उम्दा युगल गीतों को। माध्यम आपका पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही का सफर है ये। समय हुआ है 3:11 सुबह के, और इस खूबसूरत से प्यारे से समय के साथ आपके साथ रहूंगी इस सफर पर, आप ही की दोस्त रूपा धवन। नमस्कार।

साथियों, जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तो कई तरह के एहसास होने लगते हैं। हाँ, बेशक हर व्यक्ति का एहसास अलग होता है। उसकी छोटी छोटी बातें भी खास लगने लगती हैं। उसकी खुशी अपनी खुशी लगती है, उसका कुछ दिनों का नहीं सदियों पुराना साथ लगता है। फिलहाल आपका और हमारा साथ बरकरार है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही के कार्यक्रम में आप हैं रूपा के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आपका और हमारा सफर बरकरार है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही का सफर. और इस सफर पर आज आपके साथ हूं मैं रूपा धवन. तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला खूबसूरत सा ये गीत आप सभी के लिए.

तेरे साथ रहने के बहाने ढूंढते हैं, तेरे साथ रहने के बहाने ढूंढते हैं, दिल की बातें मुस्कुराकर छुपाते हैं। तुझे क्या पता तेरी एक झलक के लिए हम रोज नए रास्ते बनाते हैं।

साथ जब मनचाहा होता है तो हम जिंदगी की सीमाओं से आगे बढ़ने का हौसला भी जुटा लेते हैं, और जब साथी प्यारा हो तो उसके लिए तो हम जान की कसम भी खा लेते हैं।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. समय हुआ है 3:46 और 47 सेकंड. आप हैं हमराही के सफर पर रूपा के साथ. और दोस्तों, रेडियो का वो सुनहरा दौर और उस पर ये गीत लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं. जी हाँ, आज भी ये गीत और रेडियो हम सबके दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं. सुबह की शुरुआत, शाम की चाय या रात की तन्हाई, हर पल में ये गीत हमारा साथ निभाते हैं. और जब दो दिल मिलते हैं तो अपने दिल की बातों को कुछ इस तरह से बयां करते हैं, क्योंकि जब मुलाकात होती है तो दोनों के दिल में उथल पुथल होती है कि कुछ मैं अपने दिल की बात कहूँ, कुछ मैं अपने दिल की बात कहूँ. दोनों तरफ से तैयारी हो रही होती है कि क्या बात कहें, क्या बात करें. सुनते हैं एक ऐसा ही खूबसूरत सा ये नगमा आप सभी के लिए.

दो दिल मिले तो जैसे धुआ रंग लाई, दो दिल मिले तो जैसे धुआ रंग लाई, खामोश सी जिंदगी में भी उमंग सी आई, सारे नाम भूल गए बस एक ही नाम याद रहा, सारे नाम भूल गए बस एक ही नाम याद रहा, तू मेरे साथ था तू मेरे साथ रहा।

फिलहाल हम रीमा हमराही को हम यही विराम देते हैं और मिलेंगे आपसे कुछ ही देर में। फिलहाल आप सुनेंगे कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज से स्वीडन के गोथेनबर्ग की दो दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच लगातार मजबूत होते रिश्तों में एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जा रही है। यह दौरा प्रधानमंत्री की व्यापक यूरोप यात्रा का तीसरा चरण है और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष जनवरी में लागू होने के बाद यूरोप की उनकी ये पहली यात्रा भी है। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन भी मौजूद रहेंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसे कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान कल पहले दिन विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। अहमदाबाद और गांधीनगर में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय में श्री शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर के आधुनिकीकरण और घाट लोडिया, गोटा, चांद लोडिया तथा थलतेज क्षेत्रों में झीलों को जोड़ने की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के 70 नवनिर्वाचित पार्षदों से भी मुलाकात की। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। कार्रवाई के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। कोलंबिया में एक पूर्व मेयर रोजर्स देविया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके साथ उनके एक सहयोगी एडर कॉर्डोना की भी मौत हो गई। देविया पहले क्यूबराल शहर के मेयर रह चुके थे और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अबेलार्डो डी ला एस्प्रेला के समर्थक थे। इस घटना को राजनीतिक हिंसा माना जा रहा है। IPL क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। वहीं कल हुए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटन्स को 29 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said that the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis. He cautioned that the failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
1: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhumi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा
2: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands on Friday on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden today. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashvani, the ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations. Head of Engineering and Product Development at Artifex in Sweden, Per Stenfeldt, expressed optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and Europe arising from the India-European Union Free Trade Agreement. Electronics manufacturing company Tata Electronics and Dutch semiconductor equipment major ASML have joined hands to enable chip manufacturing in India. The pact was announced during Prime Minister Narendra Modi's visit to the Netherlands. ASML is known for having a monopoly in a category of lithography equipment, which is critical for production of advanced small-size semiconductors. The government has debunked a video circulating on social media which falsely attributes statements of the Indian Army Chief General Upinder Dwivedi regarding Operation Sindoor. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, said that the claim is fake. The unit added that the AI-generated deepfake video is being shared to mislead the public. PIB has also clarified that General Upinder Dwivedi has not made any such statement. The government has also urged citizens not to believe such content and always verify them through official sources. In IPL cricket, host Kolkata Knight Riders defeated Gujarat Titans by 29 runs wickets at the Eden Gardens in Kolkata last night. Chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans made 218 runs with a loss of 4 wickets in the stipulated 20 overs. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 247 for 2 in the stipulated 20 overs. Earlier, Gujarat Titans won the toss and elected to field. And that is the end of this news bulletin.

की किरण जो हर रात के बाद नया सवेरा लाती है, हौसलों से जो दिल रोशन रखते हैं, जिंदगी भी उनके गीत गुनगुनाती है। धीरे धीरे सुबह हो रही है, रात की चादर धीरे धीरे अपने आप में सिमट रही है। चलिए नाम लेते हैं उस प्रभु का जिसने एक और नई सुबह हमें दी। अरुणिमा का सफर है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं रूपा के साथ। नमस्कार।

अरुणिमा सी रोशनी हो तेरे हर ख्वाब में, अरुणिमा सी रोशनी हो तेरे हर ख्वाब में, नई सुबह की चमक हो तेरे हर जवाब में, अंधेरों से लड़कर जो मुस्कुरा सके वही असली उजाला है इंसान के स्वभाव में। वैसे दोस्तों, जीवन जीने की उत्साह में, या यूं कहें कि जीवन जीने की जद्दोजहद में, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम पहले अपने आप को तराश सकें, इतना तराशें कि दूसरों की जय से पहले हम पहले खुद की जय करें।

हमारी जिंदगी में यादों का एक अहम हिस्सा है। ये यादें हमें खुशी के तो कभी गम के आंसू दे जाती हैं। खुशी के आंसू हंसी के साथ साथ निकलते हैं और दुख के आंसू तो वैसे ही अश्रुधारा निकल जाते हैं। इन यादों को सोचते हुए चलिए चलते हैं उस यादों के गलियारे की ओर, जहाँ ये गीत हमें पुकार रहा है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: समय हुआ है 4:29। आप हैं अरुणिमा कार्यक्रम में अपनी दोस्त रूपा के साथ।
1: गोपी मिस्टर गोपी

समय हुआ है 4:35 और 5 सेकंड। अरुणिमा का सफर है और ये वक्त भी गुनगुनाने की सदाएं दे रहा है एक नई ऊर्जा के साथ। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप रूपा के साथ। अरुणिमा में आपके साथ है रूपा। साथियों, किसी ने कहा है कि बुरे कर्म का अंजाम भी बुरा ही होता है। हर गलत रास्ता कहीं ना कहीं रोता है। आज चाहे सुकून लगे गलतियों का साथ, आज चाहे सुकून लगे गलतियों का साथ, कल वही इंसान कर्मों से हारता है। एक गीत ऐसा ही आया सावन झूम के फिल्म से आप सभी के लिए, इस बात को, इन पंक्तियों को सार्थक करता हुआ।

हार से डरकर बैठ जाना आसान होता है, मगर कोशिश करने वाला ही महान होता है। वैसे जीत भी उन्हीं के कदम चूमती है अक्सर, जिनके इरादों में सच्चा तूफान होता है।

हमारी जिंदगी में रिश्तों की भी एक खास अहमियत है। रिश्तों के तानों बानों में गुजरती ये जिंदगी कभी प्यार के अनमोल रत्नों को जोड़ती है तो कभी और किसी सपनों के धागों को बुनती है। इसी कश्मकश में ये जिंदगी की राहें कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उतार कभी चढ़ाव, इसके साथ साथ चलती जाती है, जिसमें अनेक भावों को समेटे हुए हमारा ये दिल कुछ गुनगुनाता भी है, कुछ गाता भी है। फिलहाल आप गुनगुना रहे हैं हमारे साथ, यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रिश्ते चाहे बदलते रहें, अरुणिमा का सफर है इस वक्त आपके साथ और रिश्तों से जुड़ी बातें हम कर रहे हैं। आज के इस सफर में आपके साथ हूं मैं रूपा। तो जनाब, रिश्ते चाहे कैसे भी हों, कैसे भी रहें, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास रखना है ताकि हमारे जीवन के सुंदर मूल्यों को हम दूसरों के सामने और अपने आगे दर्शा सकें।

तो जनाब, समय भी रेत जैसे मुट्ठी से फिसलता है ना, ऐसे ही हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है. और अभी फिलहाल वक्त है 4:55. आप हैं अरुणिमा मेहर रूपा के साथ. भंवर कितना भी गहरा क्यों ना हो, कश्ती का हौसला डूबने नहीं देता. जो दिल उम्मीद से रोशन हो, कोई अंधेरा रोक नहीं सकता. जी हाँ, दुनिया की जो दुनियादारी है वो हमें यही सिखाती है कि दुनिया में कितने भी उतार चढ़ाव आए, चाहे हमारी ज़िंदगी में, हमें अपनी राहों को छोड़ना नहीं है. अपने दिल की उमंगों के साथ, पुरजोर कोशिश के साथ, बस आगे ही आगे बढ़ते रहना है.

0: अरुणिमा से रूपा विदा लेते हैं. कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद आपके साथ फिर से मुलाकात होगी भोर सुहानी कार्यक्रम में. तब तक के लिए रूपा को विदा दीजिए. नमस्कार.
1: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे. यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी. श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे. इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी. दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भी यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी. ये यूरोप के उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है. प्रधानमंत्री मोदी की इस वर्ष जनवरी में ऐतिहासिक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद यूरोप की पहली यात्रा है. इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. पांच देशों की यात्रा के अंतर्गत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है.
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है. भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है. भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है. मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं.

0: इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इस दौरान टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण के लिए साझेदारी की है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र तैयार करने की टीम में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और समाज के अन्य वर्गों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति की अध्यक्ष PP चौधरी ने बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार से संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। RG कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। मामले की एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के सभी निर्णय को भी अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि स्थगित करने का भारत का निर्णय अभी लागू है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और CRPF ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। 5 अन्य माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। गिरफ्तार किए गए 8 माओवादियों में 2 संभागीय समिति सदस्य और 2 प्लाटून पार्टी समिति सदस्य शामिल हैं। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यानिक सिनर इटली ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में कल सिनर ने दानिल मेदवेदेव को हराया। फाइनल में आज सिनर का मुकाबला कैस्पर रूड से होगा। रूड ने दूसरे सेमीफाइनल में इटली के लुसियानो डार्डेरी को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with the Swedish counterpart Ulf Kristersson to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action and people-to-people ties. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with President of the European Commission, Ursula von der Leyen. This engagement represents the third leg of the prime minister's broader European tour and his first visit to the continent since the landmark India-European Union Free Trade Agreement took effect in January 2026. This journey is designed to review bilateral relations and explore cooperation in an era of rapid technological shifts and complex geopolitical challenges. The visit follows a high growth trajectory in economic engagement, with bilateral trade reaching a record $7.75 billion in 2025 and Swedish FDI into India totaling $2.825 billion between 2000 and 2025. This foundation was laid during the Prime Minister's 2018 visit, which led to the Joint Innovation Partnership for a Sustainable Future. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. This deep-rooted bond is marked by historic milestones such as centenary of Nobel laureate Rabindranath Tagore's 1926 visit to Sweden. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. Prime Minister Narendra Modi undertook a series of engagements on the second day of his visit to the Netherlands yesterday, ranging from community interactions to a meeting with the Dutch royal family. In a significant cultural moment, Prime Minister Modi and the Prime Minister of the Netherlands witnessed the historic restitution of the Shola-era copper plates. More than artifacts, these plates represent an invaluable chapter of India's heritage and civilization. And their homecoming holds deep emotional significance for the people of India. The day also advanced in India's technology agenda. Tata Electronics signed an MOU with semiconductor leader ASML to strengthen India's semiconductor manufacturing ecosystem. Under the MOU, ASML will support the establishment and expansion of Tata Electronics semiconductor facility in Dholera, Gujarat. The two leaders jointly interacted with the CEOs of leading Dutch companies from energy, ports, health, agriculture, trade and technology. Delhi government has taken a significant decision to reduce the value-added tax on aviation turbine fuel in the national capital from 25% to 7%. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the decision has been taken in line with the Prime Minister Narendra Modi's emphasis on strengthening connectivity and economic activity with the objective of providing relief to the aviation sector, promoting tourism and logistics activities. The Chief Minister informed that the concessional rate will initially remain in force for a period of 6 months. She said that the decision taken in the interest of both the nation and Delhi may result in estimated revenue loss of nearly 985 crore rupees for the government. The R.J. Kerr Medical College rape and murder case will be heard by the division bench of Justice Shampa Sarkar and Justice Tirthankar Ghosh of the Calcutta High Court. Earlier, Justice Radhashekar Mantha and Justice Rai Chattopadhyay recused themselves from the case on May 11th. Sanjay Roy, the lone convicted in the case, was sentenced to life imprisonment in January 2025. The case is under the investigation of the Central Bureau of Investigation, CBI, which demanded death sentence, whereas Sanjay Roy pleaded for his release. In IPL cricket, host Kolkata Knight Riders defeated Gujarat Titans by 29 runs at Eden Gardens in Kolkata last night to keep their playoff hopes alive. Chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans made 218 runs with a loss of 4 wickets in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके इस प्यारे से स्वागत के साथ प्यारा सा नमस्कार रूपा धवन का। तो जनाब, आज की भोर सुहानी क्या कुछ खास लाई है, क्या कुछ हमने देना है जिंदगी को और क्या कुछ हमें देगी जिंदगी, इसी सोच विचार को रखते हुए बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे भोर सुहानी के साथ और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो हम सबको प्रेरणा देता है उस प्रभु की आराधना की।